मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ और 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ और 102.9 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर और

0: शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए विचार मंथन। विचार मंथन में आज आप महात्मा गांधी का विचार सुनेंगे। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, बल्कि ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। और लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर हर जगह विद्यमान है। अगर भक्त अपने मन की आंखों से उन्हें देखे तो वे उसे सब जगह दिखाई देंगे।

प्रभु का स्मरण मन को वैसा ही पवित्र कर देता है जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। जो हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद देता है उसके जीवन में शांति और कृपा स्वतः उतर आती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उत्सव का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूँ। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी have arrived at the iconic Red Road, and the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging, and we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं, और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त

मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ

0: our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और

0: venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
1: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है. हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं.
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए.
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
1: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं. पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है. योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड. And he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here. And he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road. And we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है. मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है.
1: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं. और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं.
1: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है.
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया. हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है. ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से.
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं.

0: Guruji, Manish, Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
1: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. Hamari chetna hamare sharir ko follow karti hai. Hum chitt se kaya ki taraf badhte hain. To ye jo grivasan hai, isme hum kya hota hai ki hamari जो चेतना है हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है मतलब उसकी इंटेंशन उसकी पहुंच उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो
2: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में
1: योग पूरी प्रकृति पूरा ब्रह्म पूरा विश्व पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है बस जानता नहीं है है ना अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं किससे जुड़ रहे होते हैं जोड़ कौन रहा होता है हमारी चेतना हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है हमारा स्थूल शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा कारण शरीर जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है प्रकृति की जागृति होती है और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है आज इस पूरे समाज को इस पूरी जगत को इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है
2: जी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग तो इस समय यहाँ पर स्कंद चालन का अभ्यास किया जा रहा है प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं
3: स्कंद चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं
2: जी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है योग को बढ़ाया है विभिन्न पदों पर आप रही हैं मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए आप बताएं
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज हैं एमएससी है एमए है और पीएचडी है
2: जी
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगा थेरेपिस्ट के रूप में वेलनेस कोच के रूप में योगासन कोच के रूप में आदि
2: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी युवाओं में आजकल तनाव अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है
1: बहुत बढ़िया एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो

0: जाते हैं तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे। तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है।
1: जी yes, and... और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
1: जी
3: यस। एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है। हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकती वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है।
1: जी, और हम यहाँ देख रहे हैं

0: कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: एंड वी कैन आल्सो सी नीलम एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है। और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली। एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशकासन का। खरगोश
2: की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशकासन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशकासन करने के बाद

0: फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: Now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
1: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द
0: आसन, उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है। तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है, तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा,

0: उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पूल, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूल

मैं चमन सालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल कैलानी और कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी के जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से यह प्रसारण आप तक

त्योहार और पर्व फिर तो रस मलाई ही बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमामय समारोह में मैं चमन सालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुँच रहा है उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल सहायक श्री गुरुदास सिंह।

0: कार्यक्रम अनुसार श्री नीला बाजपेयी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग, इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं, पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मरकज है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता, संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से विभूषित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है कि रेवा के हर
1: शंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है, वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे इस पावन गीत के लिए।

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है, और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है, और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है, और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज़्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्या था आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम, नर्मदे महारानी की यह नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सब के लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सब के माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सब

0: सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग के इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना ववत्तु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामय उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए।

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज़ आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, ओमकार के लिए श्वास भरिए। ओ

खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटी चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए।
पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाएं

दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनके भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंडासन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्रासन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके

में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए, दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपने हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए। श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35-45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्धहलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते

हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आँखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाति का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रिल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे ज़रूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

दोनों हथेलियों को अपने आँखों पर रखिए। हथेली के अंदर आँखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए।

0: एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का। और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है, हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान, तन हो निरोग मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहां योग है वहां स्वास्थ्य है, जहां स्वास्थ्य है वहां उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
2: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को

0: दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है तथा मन की चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: बारहवीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान

और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं, वो योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ, आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला, मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवी और स्वजन जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म एक दूजे के लिए से। गायक कलाकार हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज़ वापस लिए चलता हूँ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म पैडमैन से। स्वर है अरिजीत सिंह का, बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का। आइए सुनते हैं पैडमैन फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब का ये गीत। आवाजें थी शबीर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म आशिकी 2 से। स्वर है अरिजीत सिंह का। गीतकार और संगीतकार हैं मिठुन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है। केंद्रीय आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृतियां प्रदान की। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। और श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं सुग्रीव चक्रवर्ती। आइए सुनते हैं उनके स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रकृति की बात, आकाशवाणी

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नार्जरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरीजान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्जारी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
3: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमुरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमुरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागियों अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
2: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
4: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गांव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
2: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
3: हमने सबसे पहले गांव-गांव के महिलाओं को जाकर सहायता किया। SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
2: सनकदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
4: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गाँव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है, महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें हर, जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गांव में अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गाँव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन्स भी बनाए है और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छे तरह से डिस्पोजल हुआ। हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो।

0: लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पोल्यूशन होता है उससे उसका उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस एलपीजी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है। हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है सब सोलर पावर्ड ही है।
1: गीतांजलि, ये एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
2: हम लोग गांव में जो पंचायत वार्ड है, एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप को हम लोग को गांव गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
1: और सनकदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
0: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया। वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे। बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ऐसे करके हमारे गाँव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
2: सरकार ने जैसे हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना
1: जी।
2: और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: संविधान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे ये लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेड मास्टर है, एक्चुअल में गाँव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं। और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गांव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना। पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गाँव में।
1: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितने भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है। उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
1: सरंगदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां हैं उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गाँव गाँव में अनाउंसमेंट करते हैं जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गाँव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं। और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गांव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं और हमें यह समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है। इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं। वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
0: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
0: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है। हमने पेपर वर्क फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गांव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, तो इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहां पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से जो भी बदलाव वहां पर देखा जा रहा है, इससे वहां के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गाँव के आस पास जितने भी घर है उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेकश्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियाँ हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गाँववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे। रहे, हम लोग जितना भी उन जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों

0: पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: फिल्म जिगरी दोस्त का ये गीत आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाड़।

0: जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावना ने तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, अॼु असां हिकु अहिड़े विषय ते ॻाल्हाइण लाइ गॾु थिया आहियूं जंहिं जो तालुक इंसान जी सिहत, सुकून ऐं खु़शहालीअ सां आहे। योग। योग भारत जी प्राचीन विरासत आहे जंहिंखे अॼु सॼी दुनिया अपनाए रही आहे। योग जो मतिलबु आहे शरीर, मन ऐं आत्मा जो मिलणु। ही सिर्फ़ हिकु कसरत कोन्हे, पर हिकु मुकमल ज़िंदगीअ जी राह आहे। रोज़ाना योग करण सां शरीर मजबूत थींदो आहे, मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं माण्हूअ जो आत्मविश्वास बि वधंदो आहे। अॼु जी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगीअ में तनाव, फ़िक्र ऐं घणियूं बीमारियूं वधियूं रहियूं आहिनि। अहिड़े वक़्त में योग असांखे संतुलित ऐं स्वस्थ ज़िंदगीअ जी राह ॾेखारींदो आहे। योग सां न सिर्फ़ शरीर फिट रहंदो आहे, पर मन में सकारात्मक सोच पैदा थींदी आहे। 21 जून ते सॼी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हीअ असां भारतवासियुनि लाइ फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे त योग जे महत्व खे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ते मान्यता मिली आहे। हीअ भारत लाइ घणे गर्व जी ॻाल्हि आहे, छो जो असांजी पुराणी परंपरा अॼु विश्व जे हर कोने में सम्मान हासिल करे रही आहे। दोस्तों, योग सिर्फ़ शरीर खे स्वस्थ रखण जी विधि कोन्हे, पर हिकु अहिड़ी जीवन शैली आहे जेकी इंसान खे मानसिक, शारीरिक ऐं आध्यात्मिक रूप सां मजबूत बणाईंदी आहे। योग शब्द जो मतिलबु आहे जोड़ण, यानि शरीर, मन ऐं आत्मा खे हिकु सूत्र में ॿधण। असांखे इहो संकल्प करणु घुर्जे त असां रोज़ाना कुझु समय कढी योग ज़रूरु कंदासीं। जॾहिं हर माण्हू स्वस्थ रहंदो त परिवार स्वस्थ रहंदो, ऐं परिवार स्वस्थ त समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ रहंदो त देश मजबूत ऐं प्रगतिशील थींदो। योग सिर्फ़ हिकु व्यायाम कोन्हे, पर स्वस्थ ऐं सुखी जीवन जी कुंजी आहे। अचो त योग अपनायूं, निरोगी जीवन पायूं। दोस्तों, योग जे बारे में वधीक जानकारी ॾियण लाइ असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी, जेके योग जे बारे में छा फ़ाइदा आहिनि ऐं कीअं योग करणु घुर्जे उन जे बारे में असांखे वधीक जानकारी ॾींदा। त डॉक्टर साहिबु, मां तव्हांखां इहो पुछणु चाहींदमि त योग आहे छा आख़िर?
1: योग आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि आहे। इन जे लाइ युजते अनेन इति योगः। जेॾी महिल आत्मा जो परमात्मा सां गॾु मिलन थींदो आहे, उहो यूनाइट जेको कंदो आहे, जेको कनेक्ट कंदो आहे, उहो योग आहे। तीअं ई असां योगा कर्मासु कौशलम, भगवत गीता में कर्म योग जे अंदरि योग जी परिभाषा जेकी आहे उहा ॾिनल आहे, योगा कर्मासु कौशलम। असां कहिड़ो बि कमु था कयूं, उहो स्किलफुल हुजे, उन में परफेक्शन हुजे, ऐं पंहिंजो इनर पीस जे लाइ भी असां योग कंदा आहियूं। त योगा फिज़िकल लेवल ते, मेंटल लेवल ते, इमोशनल लेवल ते, हर लेवल ते असांखे बेनिफिट ॾेई रही आहे। ऐं सभिनीनि खां वधीक त मन शांति रहंदो आहे, असां तंदुरुस्तु रहंदा आहियूं, हमेशह फिट रहंदा आहियूं। इन जे लाइ योग जेको आहे तमामु ज़रूरी आहे।
0: असां अॼुकल्ह ॾिसूं पिया था त कीअं भागदौड़ वारी ज़िंदगी लॻी पई आहे। ॿार त अॼुकल्ह उन्हनि खे टाइम ई कान्हे, फुर्सत ही कान मिलंदी आहे। अॼु जे आधुनिक जीवन में हिन योग जो छा महत्व आहे?
1: जीअं तव्हां चयो भागदौड़ जी ज़िंदगी, असां ॾिसूं पिया था असांजो फिज़िकल एक्टिविटी ख़तमु पियो थो थींदो वञे, केवल स्ट्रेसफुल लाइफ, तनाव सां असां रहंदा पिया था वञूं। ॿार ॾिसूं त मोबाइल में सॼो ॾींहुं आहिनि, ऐं वधीक टाइम असां स्क्रीन ते था बितायूं।
0: सभिनी खां वॾी परेशानी,
1: ॾाढी वॾी, ऐं उन जे करे थिए छा थो की असांजो फिज़िकल मूवमेंट थी कान थो सघे, मानसिक विकास जेको थियणो आहे उहो थी कान थो सघे। केवल असां हिकु लिमिटेड सोच में रहिजी विया आहियूं, जंहिंजे करे असांखे शारीरिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं, मानसिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं। त सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जेॾीमहिल असां कोई एक्टिविटी नथा कयूं, असांजी अस्वस्थ दिनचर्या आहे, उनजे करे जेके परेशानियूं थींदियूं आहिनि उहे बीमारियुनि में उत्पन्न थींदियूं आहिनि, ऐं पोइ मानसिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि, शारीरिक रोग थियणु चालू थींदा आहिनि। ऐं उन्हनि में सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे की योगा जेको आहे उहो हिकु फिज़िकल एक्टिविटी त आहे ई, पर हिकु मेंटल बूस्टर जी तरह कमु कंदो आहे, माइंड खे रिलैक्स करे एनर्जाइज कंदो आहे। असां जेॾीमहिल प्राणायाम, ध्यान, आसन जी प्रक्रिया कंदा आहियूं त ओवरऑल बॉडी में रीवाइटलाइजेशन थींदो आहे, असांजो वाइटल फोर्स वधंदो आहे। त असां जेको आलसी जीवन पिया बितायूं, हाणे असां उहो आलसी जीवन छॾे करे व्यायाम करे ऐं पाण खे तंदुरुस्तु बणाइण जे रस्ते ते असां हली रहंदासीं, त असांजा रोग बि पूरी तरीक़े सां ठीकु थींदा। त हिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सभिनीनि खां वधीक ज़रूरी आहे हिकु कलाकु पंहिंजे लाइ कढणु, चोवीहनि कलाकनि में जंहिं वटि पंहिंजे लाइ हिकु कलाकु कान्हे, पोइ जीअणु बेकार। जीअणो आहे, तंदुरुस्त जीअणो आहे, बिना दवा तंदुरुस्ती हासिलु करणी आहे त योग जे माध्यम सां केवल हिकु कलाकु पंहिंजे शरीर खे ॾेई करे शारीरिक व्यायाम करे तंदुरुस्त रही सघूं था।
0: सही आहे इहा ॻाल्हि त अगरि असांजो शरीर स्वस्थ आहे त असांजो जीवन बि स्वस्थ आहे,
1: पूर्ण रूप सां स्वस्थ रहंदासीं। हाँ। असां
0: योग ज़रूरी छो
1: आहे? योग जे प्रकार सां असांखे खाधो ज़रूरी आहे, जंहिं प्रकार सां असांखे सुम्हणु ज़रूरी आहे, जंहिं प्रकार सां कमु करणु ज़रूरी आहे, जंहिं प्रकार सां आमदनी असांखे हुजणु जुड़े उहो ज़रूरी आहे, तंहिं प्रकार सां मन जी शांती ऐं शरीर जी तंदुरुस्तीअ जे लाइ योग ज़रूरी आहे। जीअं ध्यानु जेको आहे उहो आत्मा जो भोजन आहे, शरीर जो भोजन त असां रोटी था खाऊं, पर आत्मा खे अगरि असांखे स्वस्थ बणाइणो आहे त शरीर स्वस्थ थींदो, शरीर स्वस्थ थींदो त उन जे लाइ ध्यान जी प्रक्रिया जेकी आहे मन खे शांति कंदी आहे, छोकी असांजा 90% प्रॉब्लम्स जेके आहिनि माइंड खां दिमाग़ खां चालू थींदा आहिनि ऐं शरीर जे मथां रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि, कारण वीचारनि में आहे। इन जे लाइ जेॾी महिल चवंदा आहियूं की पंहिंजा वीचार नकारात्मक थींदा आहिनि त शरीर में कीअं पंहिंजे मथां शरीर जे मथां बीमारियूं रिज़ल्ट कंदियूं आहिनि, त इहो साइकोसोमेटिक डिज़ीज़िस खे ओरिजन कंदो आहे। त इन सां छा थींदो आहे न की कारण त दिमाग़ में हूंदो आहे, उन जा रिफ्लेक्शन शरीर ते ॾिसंदा आहिनि, कमज़ोरी थियण त ॾिसंदा आहियूं पाण, गुस्से में केतिरो एंग्ज़ाइटी थी वेंदी आहे त कीअं हथ पेर कापंदा आहिनि असांजा, त इहो आहे की तनाव जो शरीर जे मथां प्रभाव, ऐं पोइ शरीर जा अंग जेॾी महिल पंहिंजो कमु करणु छॾंदा आहिनि पोइ शरीर खे बीमारी थींदी रहंदी आहे। त असांखे मन खे जेॾी महिल ध्यान जी प्रक्रिया सां शांति कंदा आहियूं ऐं असांजो प्रफुल्लता जेॾी महिल ख़ुशी वधंदी आहे, आनंदित रहंदा आहियूं असां, त तेॾी महिल शरीर जे अंदरि कोई सूरु कोन महसूसु थींदो आहे, कोई तकलीफ़ कोन महसूसु थींदी आहे, असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त महसूसु कंदा आहियूं, वधीक कमु करे सघंदा आहियूं, एनर्जी अची वेंदी
0: आहे। योग सां कहिड़ियूं बीमारियुनि जो इलाजु थी थो सघे?
1: योग सां अॼु जे तारीख़ में अगरि ॾिठो वञे एट प्रेज़ेंट जेके माण्हू आधुनिक जीवन में योग अपनाइनि था, ॾाढा माण्हू आहिनि जंहिं पंहिंजे जीवन शैलीअ जे संबंधित बीमारियुनि खे पूर्णता ठीक करे वेंदो आहे। डायबिटीज़ आहे, हाइपरटेंशन आहे, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आहे, गोॾनि जी तकलीफ़ आहे, एड़ियुनि जी तकलीफ़ आहे, शोल्डर जी तकलीफ़ आहे, साहु खणण में तकलीफ़ आहे, या इवन मेंटल प्रॉब्लम्स आहिनि जीअं डिप्रेशन आहे, एंग्ज़ाइटी आहे,
0: या डिप्रेशन जेको तव्हां चयो एंग्ज़ाइटी, अॼुकल्ह ॿारनि में हिकु इहो वर्ड डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ाइटी, मतिलबु इहे मां टे वर्ड सम्झां थी की अॼुकल्ह हर हिकु शायदि नंढो ॿार बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु दोहराईंदो आहे, मां डिप्रेशन में आहियां। इन डिप्रेशन या एंग्ज़ाइटीअ मां बि मतिलबु योग करे असां इन खे ख़तमु करे था सघूं,
1: पूरे तरीक़े सां था करे सघूं। योग में एतिरी शक्ति आहे छोकी असां हींअर छा आहे, पंहिंजो स्वाद इंद्रियूं आहिनि, असां स्वाद इंद्रिय जे वश में आहियूं, जबकि थियणी घुर्जे असांखे स्वाद इंद्रिय खे पंहिंजे वश में करणु घुर्जे, त पंज इंद्रियूं जेके आहिनि उन्हनि खे असां पंहिंजे कंट्रोल में कंदासीं त असां डिप्रेशन खां, एंग्ज़ाइटी खां ऐं शारीरिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्हनि सभिनीनि सां ठीकु करे था सघूं, छोकी पंच कोश जे आधार ते असांजो शरीर निर्माण थियो आहे। योग में चवंदा आहिनि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, त मनोमय कोश में कारण आहे त असांजो प्राणमय कोश बि अफेक्ट थींदो ऐं उनजो रिफ्लेक्शन अन्नमय कोश शरीर ते ईंदो। असां अगरि माइंड खे ठीकु था कयूं, मन खे अगरि ठीकु था कयूं, वीचारनि में सही था कयूं, त नेगेटिव थॉट्स जेके ॿारनि में अचनि था जंहिंजे करे डिप्रेशन थिए थो, अगरि उन्हनि थॉट्स खे असां मेडिटेशन करे ऐं योगा करे असां अगरि उहो पॉज़िटिव करे था विझूं ऐं पॉज़िटिव सकारात्मक सोच रखनि था त ॿारनि जो डिप्रेशन पूरी तरीक़े सां ख़तमु, ऐं मनोमय कोश ठीकु थींदो त प्राणमय कोश, असां आनंदमय कोश, अल्टीमेट सेल्फ रियलाइज़ेशन छा आहे कि शरीर जे अंदरि कोई बि पीड़ा न हुजे, कोई तकलीफ़ न हुजे, मन हमेशह तंदुरुस्तु हुजे, पीस हुजे शरीर में, त असां स्वस्थ आहियूं, न त बीमार आहियूं। त योग अहिड़ी कला आहे जेको न केवल बीमार माण्हू थो करे सघे पर स्वस्थ माण्हू बि कंदो त बीमारी कान थींदी।
0: जी, इहा त सही ॻाल्हि आहे, मतिलबु पहिरियों खां ई पंहिंजी तयारी करे छॾिजे की अॻियां हली करे असांखे कोई बि बीमारियूं न वेड़े वञनि।
1: जी,
0: हिकु ॻाल्हि बि मां पुछणु चाहींदमि की अॼुकल्ह ॿार जेके आहिनि ॿाहिरियों खाधो ॾाढो खाईंदा आहिनि, असां ॾिसंदा आहियूं की पिज़्ज़ा बर्गर इहे फास्ट फूड त ॾाढो था खाइनि, अगरि उहे खाई करे ऐं योग कनि त उहे छा उन्हनि जे मथां इफ़ेक्ट ओतिरो ई रखंदा की उन जो घटि थी वेंदो?
1: भगवत गीता में भॻवान श्री कृष्ण ॾाढो सुठो जेको आहे न भोजन जे मथां वाक्य ॾिनो अथई. इन में टे प्रकार जा, असांजी प्रकृतिअ जे आधार ते टे प्रकार जा भोजन थींदा आहिनि, सत्व गुण, रजस गुण ऐं तमस गुण. इहे टे गुणनि जे आधार ते असांजी प्रकृति जो निर्माण थींदो आहे, शरीर जो निर्माण थींदो आहे. असां जैसा खाएं अन वैसा होगा मन. हाणे मन ओड़ो थींदो जहिड़ो रोटी खाईंदासीं. जैसा हो मन वैसा होगा तन. त जहिड़ो मन हूंदो तहिड़ो तन थींदो, ऐं जैसा हो तन वैसा हो आपका जीवन. त असांजो जीवन कहिड़ो थियणो आहे उहो असांजे भोजन ते थो तय करे, असांजो मन कीअं थियणो आहे असांजे भोजन ते थो तय करे. त सात्विक भोजन खाईंदासीं त ऑटो असां पंहिंजे पाण खे पूर्णता तंदुरुस्त था रखूं. राजसिक ऐं तामसिक खाईंदासीं त चिड़चिड़ो सुभाउ अहिड़ा व्यवहार पंहिंजो रहंदो जेको शरीर खे बि नुक़सानु कंदो रहंदो. त ॿारनि खे जेतिरो थी सघे असां जंक फूड खां परे रखूं ऐं प्राकृतिक औषधी आहार ॾियूं, जीअं सात्विक आहार आहे, ऐं उन्हनि जा वीचार सात्विक थींदा. पोइ न हू कॾहिं चिड़चिड़ कंदा न गुसो कंदा. अॼुकल्ह ॿारनि में केतिरो गुसो ऐं चिड़चिड़ो थी पियो आहे, त उन्हनि जे लाइ त सभिनीनि खां बेस्ट आहे की उन्हनि खे अगरि असां सात्विक आहार ॾियूं था ऐं उन सां अगरि हू पंहिंजी प्रकृति सात्विक ठाहिनि था त तव्हां उन्हनि जे ॻाल्हाइण में बि नम्र व्यवहार महसूसु कंदव, त उहो उन सां फ़र्क़ु पवंदो. पर सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट आहे पतंजलि योग जेको आहे अष्ट अंगनि ते आधारित आहे, जंहिंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि. अल्टीमेट रियलाइजेशन छा आहे, असांखे समाधिअ ताईं पहुचणो आहे. पर असां ॾाढा माण्हू अट्रैक्ट थी करे केवल आसन ते रुकजी विया आहियूं. केवल योगा मतिलबु आसन, शारीरिक व्यायाम न. इन जा रूल्स ऐं रेगुलेशन जेके आहिनि की असांखे सच ॻाल्हाइणो आहे, ब्रह्मचर्या जो पालन करणो आहे, भॻवान खे सरेंडर करणो आहे, शरीर जी साफ़ु सुथिरो रखणो आहे, आंतरिक शुद्धिकरण करणो आहे. इहे रूल्स ऐं रेगुलेशन आहिनि की असां कंहिंखे चोट कान पहुचाईंदासीं. पहिरीं इहे नियम में असां परिपक्व थी वेंदासीं, असां परफेक्शन अची वेंदो. पोइ असां आसन, प्राणायाम ऐं प्रत्याहार करे था सघूं, तॾहिं त विड्रॉवल थींदो सेंसस जो. पर असां शॉर्टकट अपनाए करे थर्ड सिधो अंग ते पहुचंदा आहियूं, आसन कयूं, प्राणायाम कयूं ऐं थी वियो योग. न, बेसिक फर्स्ट स्टेप आहे यम ऐं नियम, उनखां पोइ आसन, पोइ प्राणायाम, पोइ प्रत्याहार ऐं धारणा, ध्यानु, समाधि. त उहो तेॾीमहिल ई थी सघंदो असांजो आत्मा जो परमात्मा सां मिलनि, जेॾीमहिल रूल्स ऐं रेगुलेशन इन स्टेप सां हलंदासीं. त अॼु जे मॉडर्न जीवन में हिन बिज़ी दौड़ भाग में सभिनीनि खे सभु चवंदा आहिनि असां वटि टाइम कान्हे.
0: सभिनी खां वॾी परेशानी
1: टाइम कान्हे. ऐं टाइम कान्हे त जंहिं वटि पंहिंजे शरीर जे लाइ टाइम कान्हे, अॼु अगरि तकलीफ़ हूंदी, शरीर बीमार हूंदो, हॉस्पिटल में भर्ती थियासीं, पोइ बि त शरीर जे लाइ टाइम कढणो
0: आहे. त
1: अॼु अगरि असां टाइम कढियोसीं ऐं अॼु योग करे असां पंहिंजे पाण खे तंदुरुस्त करे विधोसीं, त असां हॉस्पिटल जो ख़र्च बि बचाईंदासीं ऐं हॉस्पिटल जो टाइम बि बचाईंदासीं जेको वञिणो आहे. त जीअं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थींदी आहे, अॼुकल्ह एड्स ईंदियूं आहिनि ॾाढियूं, हा न, 28 रुपया ॾियो करोड़ जो तव्हांजो लाइफ इंश्योरेंस थी वेंदो. मां चवंदो आहियां तव्हां कलाक पंहिंजे शरीर खे रोज़ु ॾियो, तव्हांजो 365 ॾींहंनि जो इंश्योरेंस
0: आहे.
1: तव्हांखे न इंश्योरेंस जी प्रीमियम ॾियणी पवंदव ऐं न बीमार थींदव.
0: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे.
1: त असां पंहिंजो ऐं जंहिं वटि वधीक टाइम आहे, जेको रिटायर्ड आहे उहो 2 कलाक ॾिए, 3 कलाक ॾिए. त शारीरिक व्यायाम छो ज़रूरी आहे, छोकी शरीर जे अंदरि जेकी गंदगी आहे न उहा शरीर खां ॿाहिरि निकिरंदी पसीने जे माध्यम सां, पेशाब जे माध्यम सां, श्वास जे माध्यम सां, मल जे माध्यम सां. त असां खाइण में पंहिंजे शरीर जे अंदरि गंदगी विझूं था, पर कढण जे टाइम ते असां व्यायाम कान था कयूं. ऐं व्यायाम पौष्टिक तत्व जेके आहिनि शरीरनि खे लॻनि, कचरो शरीर खां ॿाहिरि निकिले, इन बैलेंस जे लाइ योग, प्राणायाम, वॉक, जॉगिंग करणु, इहे असांखे फिज़िकल एक्टिविटीज़ करणियूं हूंदियूं आहिनि. त जेको माण्हू शारीरिक व्यायाम करे थो न, उहो कॾहिं बेड ते कान ईंदो मरते दम ताईं, उहो हमेशह स्वस्थ रहंदो. तव्हां ॾिसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 200 कंट्रीज़ में हींअर सेलिब्रेट थिए थो. 21 जून ते असां इंटरनेशनल योगा डे मल्हाईंदासीं, डे ऑफ योगा. माननीय प्रधानमंत्रीअ जो इनिशिएटिव हो, 10 सालनि खां असां जॻह जॻह ते सेलिब्रेट कंदा था अचूं. हींअर योगा संगम ऐं योगा समावेश हरित योग, इहो कार्यक्रम हिन टाइम ते प्रधानमंत्री जन आयुष मिनिस्ट्री के माध्यम से लॉन्च किया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ते संगम मतलब सभी के कनेक्ट करण जोड़न
0: जो योग जो मतलब ही होंगे कि जोड़न
1: हाँ तो सभी के जोड़न और वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर वन फैमिली
0: केडी सुठी गाल
1: ते यो उद्देश्य से जदी मला असा हलूं दा ते ता खुद सोचो असा यो फैमिली भी हिका असा यो अर्थ भी हिका असा यो फ्यूचर भी हिका और असा ही हेल्थ भी हिका या ते सबनी जे स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य जे लाए अगर योग कंदा रहना सी ते हमेशा तंदुरुस्त रहना सी कदे बीमारी कान थी न रोग मुक्त भारत जो निर्माण योग से ही थी सके तो और योग से 90% बीमारियों ठीक थी वेंदियूं छो कि मन में जेकी बीमारी थी आ वो तन ते लथी आ तन जी बीमारी ठीक करनी आ तो पहले मन के ठीक करनो पेंदो और मन ठीक आ तो सब ठीक
0: आ सब ठीक
1: आ मन ठीक काने
0: तो कुछ भी ठीक काने पण असा दिसना पायो कि खादे जो पे फर्क पेंदो आ
1: लाडो
0: जी असा जे बुजुर्ग दिसू त उए अड जी जेकी नई टई आ उने खा वधिक सुठे सा हली सकंदा हन और वधिक कंब करे सकंदा हन मतलब आलसपन जो असा दिसूं पे कि अजकल की जनरेशन में अजकल के बारन में वो तो वधिक ही है तो योग करण सा छाए कि यो आलसपन भी वेंदो आहे है ना जी मानसिक ता चाहे तो मानसिक और फिजिकल भी स्ट्रेंथ थी अचन
1: जैन जी रोटी जो जेको है ता जे खादे जो चाहे डाडो फर्क पेंदो है एक गाल ध्यान पे अचे पेरी असा बुजुर्ग जेके न वचेना घट खा गम खा डॉक्टर वट करी न वन
0: अरे वाह
1: हाणे जेको है ना हाणे चंदा है वधिक खाओ गम न स्वादिष्ट खाओ। स्वादिष्ट खाओ वधिक खाओ और रोज रोज डॉक्टर जा चक्कर लगायो
0: और गम न खाओ
1: गम न खाओ
0: सही है हाणे हलंदे हलंदे असा यो मां चंदम की नई टई हूं असा जे श्रोताओं के ता योग के बारे में छ मैसेज देन चाहिदो
1: मां ते श्रोताओं के एको ही मैसेज दींदम कि अगर असा जीवन में बदलाव चाहियूं था परिवर्तन आऊं पांजे पान के हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहियूं था तो पांजे लाए टाइम कढूं जेको के वट आए का ना पर ता 30 मिनट 30 मिनट भी अगर ता पांजे लाए कढंदा कलाक भी पांजे लाए कढंदा आऊं योग केवल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जे लाए न कयूं योग के पांजे जीवन में शामिल कयूं पो तां ॾिसंदा न डिप्रेशन रहंदो न शरीर जी प्रॉब्लम रहंदी कुझु प्रॉब्लम कान रहंदी इन जे लाइ तव्हां ऑफिस में आयो तॾहिं बि योग करे था सघो प्राणायाम त उते वेठे वेठे बि था करे सघो ईअं त आहे कान कान था करे सघो त इन जे लाइ करण जो मन ठाहिण इहो मुंहिंजो संदेश आहे कि असां करण जो मन ठाहियूं ऐं करणु प्रारंभ कयूं अगरि चालू कंदासीं तॾहिं ई सफलता हासिलु थींदी न त सफलता हासिल कान थींदी
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे जीअं माण्हू पंहिंजे लाइ टाइम कढनि था जीअं सिनेमा ॾिसण लाइ त टाइम कढनि या कुझु बि कहिड़ी बि एक्टिविटी करण लाइ टाइम कढनि था त उन लाइ बि टाइम कढणु ॾाढो ज़रूरी आहे ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायव योग जे बारे में तव्हांजो घणो घणो महिरबानी आहे कि तव्हां असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में आयव ऐं योग जे बारे में असांखे हेॾी सुठी जानकारी ॾिनव
1: धन्यवाद
0: दोस्तों हाणे वधू था हिकु ॼाण जी तरफ़ वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस ही ॾींहुं असांखे अहिड़े महान वीर नारीअ जी यादि ॾियारींदो आहे जंहिंजे साहस त्याग ऐं देशभक्ति इतिहास जे सुनहरे अखरनि में लिखियलु आहे रानी दुर्गावती भारत जी अहिड़ी महान वीरांगनाउनि में शामिलु आहे जंहिं पंहिंजे राज्य प्रजा ऐं सम्मान जी रक्षा करण लाइ पंहिंजी जान क़ुर्बान करे छॾी नंढपण खां ही हुन में वीरता आत्मविश्वास ऐं नेतृत्व जी भावना हुई हूअ युद्ध कला घुड़सवारी ऐं शस्त्र हलाइण में माहिर हुई

राणीअ जो विवाह गोडवाना जे राजा दलपत शाह सां थियो। राजा दलपत खां पोइ पंहिंजे पुट वीर नारायण जे संरक्षक जे रूप में राज्य जो शासन संभालियो। हुन न केवल कुशलता सां राज्य हलायो, गॾोगॾु प्रजा जे कल्याण ऐं विकास लाइ घणे कम बि कया। जॾहिं गोडवाना ते मुग़ल सेना हमिलो कयो, तॾहिं राणी दुर्गावती हिमत हारण जे बजाए दुश्मननि जो डटे करे मुक़ाबिलो कयो। हुन पंहिंजे सैनिकनि सां गॾु युद्ध जे मैदान में लही वीरता जो शानदार उदाहरण पेश कयो। युद्ध जे हलंदे घायल थी वञण खां पोइ बि हुन हार न मञी। 24 जून 1564 जे ॾींहुं राणी दुर्गावती पंहिंजे स्वाभिमान ऐं स्वतंत्रता जी रक्षा कंदे वीरगति पाती। हुन आत्मसमर्पण खां बहितर बलिदान ॾियण खे सही समुझो। हुननि जो त्याग ऐं बलिदान अॼु बि असां खे प्रेरणा थो ॾिए। रानी दुर्गावतीअ जो जीवन असां खे इहो सेखारींदो आहे त मुश्किल हालात में बि हिमत, आत्मविश्वास ऐं सच्चाई कॾहिं न छॾणु घुरिजे। हुन जो बलिदान ख़ासि करे जाइफ़ाउनि लाइ प्रेरणा आहे त नारी शक्ति हर चुनौतीअ जो डटे करे सामनो करे सघे थी। अचो त गॾिजी मिली असां सभु महान वीरांगना खे श्रद्धापूर्वक नमन करियूं ऐं इन सां गॾु गॾु ॿुधूं था घनश्याम वासवानी ऐं दादा दुखायल जो ॻायल ही सुहिणो देशभक्ति गीतु।

दोस्तों, नशो इंसान जी जिंदगी जो कि अड़ो दुश्मन आए जेको धीरे धीरे उन जी सेहत, परिवार, सम्मान ए भविष्य के बर्बाद कर छो है। शराब, तंबाकू, गुटका, सिगरेट ए ब्यू भी नशेलू शयू शरीर के तो नुकसान पहुंचाए नहीं थियूं, पर मानु जी सोच, व्यवहार, सोचने ए निर्णय जी क्षमता के भी खराब असर पहुंचाए थियूं। अज घना नौजवान गलत संगत, तनाव या फैशन जी हलंदे नशा था कन, पर उनन के यो समझन गुर्जे ते केड़ो भी नशो कें भी समस्या जो हल ना आहे। नशो तो पाण ही समस्या वधाईंदो आहे, इंसान के पेंजे लक्ष्य ए सफलता खां परे थो करे। नशे के कारण घणे ही परिवार तबाह थी वेंदा आहिन, घणियूं बीमारियूं वधंदियूं वेंदियूं आहिन, पैसे के नुकसान सां गड समाज में अपराध के भी वधाईंदो आहे। नशो करण वारो इंसान पेंजी जिंदगी सां गड पेंजे परिवार की जिंदगी के भी खराब कर छॾींदो आहे। एक स्वस्थ ए प्रगतिशील समाज तदे ही बणजंदो जडे असांजी नई टई नशे का पासो करे, शिक्षा में, खेल कूद में, योग ए सकारात्मक सोच में अग्या वधे। ये संस्कार उन्हन के घर में ही मिलंदा। मुझी तो सभी माओ पी ए वडन सा निमाणी वेनती है तो तवा भी पेंजे बारन या कें के भी नशो कंदे डिसो तो उन्हन के रोकन तवाजो फर्ज है। पेंजे समाज में नशे जे नुकसान खां सभी के जागरूक करण असांजो फर्ज है। दोस्तों, इन्हीं सा गड बुधू था एक सुहणो गीत।

दोस्तों इन्हीं खां पोए एक मां बी ॼाण ॾियण चाहिंदम असांजे मोदी सरकार के 12 साल पूरा थिया आहिनि सरकार जी जॾहिं 12 साल पूरा थिया तंहिं दौरान मुल्क जी तरक्की खुशहाली ऐं आवाम जी भलाई लाइ घणेई कम कया विया गुज़िरियल 12 सालनि में मुल्क में घणेई अहम तब्दीलियूं आयूं तरक्कीअ जा कम थिया ग़रीब किसाननि जाइफ़ाउनि ऐं नौजवान या समाज जे कमज़ोर वर्गनि जी भलाईअ लाइ घणेई योजनाऊं बि शुरू कयूं वयूं साफ़ सफ़ाई इलाज पाणी बैंकिंग ऐं डिजिटल सहूलियतुनि खे आम माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी पूरी कोशिश कई वई कुझु अहिड़ियूं योजनाऊं जिन जो मां ज़िक्र कयां थी 81 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे हर महीने मुफ़्त राशन ॾियणु 10 करोड़ खां वधीक उज्ज्वला गैस कनेक्शन लॻाइणु 70+ वारे बुज़ुर्गनि खे 5 लख जो मुफ़्त उपचार ॾियणु 60 करोड़ खां वधीक माण्हुनि खे आयुष्मान भारत जी सुरक्षा 26 शहरनि में मेट्रो जी सुविधा 164 वंदे भारत ट्रेन जी सुविधा अटल सेतु सुदर्शन सेतु चिनाब रेल ब्रिज बोगीबिल ब्रिज पवन समुद्री जहिड़ा वॾा वॾा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो निर्माण देश भर में 2 लख स्टार्टअप MBBS सीटुनि जी संख्या लॻभॻि 1.3 करोड़ थी वई आतंकवाद ते कड़ो प्रहार थियो करीब 38,400 करोड़ जा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट गुलामीअ जी मानसिकता खां मुक्ति 4 करोड़ खां वधीक किसाननि खे 2 लख करोड़ जो फसल बीमा योजना ॾियणु किसाननि लाइ लॻभॻि 4 लख करोड़ खां वधीक PM सम्मान विधि ॾियणु 32 करोड़ खां वधीक जाइफ़ाउनि जो जन धन खातो खोलणु सेना में जाइफ़ाउनि खे स्थायी कमीशन मिलणु ऐं ॿिए बि अहिड़ा घणेई कम जंहिं जो शायदि मां ज़िक्र न कयो आहे लोकतंत्र में हर सरकार जी क़ाबिलियत उहा आहे त हू आवाम जी उमेदुनि ते खरो लहे तरक़ीअ सां गॾु चुनौतियूं बि ईंदियूं आहिनि पर असांखे मिली करे इन्हनि चुनौतियुनि जो मुक़ाबिलो करे मुल्क खे अञा मज़बूत ठाहिणो आहे त दोस्तो असां बि इहो प्रण कयूं कि असां बि पंहिंजे देश खे पंहिंजे मुल्क खे अॻियां वधाइण में को कसर न छॾींदासीं दोस्तों हाणे वक़्तु थियो आहे अॼु जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे उमेदु आहे त तव्हांखे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा मिलूं था हिकु नई उमेद सां हिकु नई ख़ुशीअ सां हिकु नए कार्यक्रम सां सभ जो भलो

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुँचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना महान साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। फिल्म आनंद मठ में इस गीत को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया था तथा इसका संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। ये गीत भारत माता के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज भी वंदे मातरम सुनते ही प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व और देशभक्ति की भावना जाग उठती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विश्व दर्पण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: श्री मोदी ने योग को विश्व को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: देश के अलावा दुनिया में भी योग का जश्न देखने को मिला। सऊदी अरब में रियाद में कल 500 से अधिक प्रतिभागियों ने योग दिवस मनाया। कार्यक्रम में राजनयिकों, योगाचार्यों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। सऊदी योग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल सादी ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। कनाडा के टोरंटो में भी सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर पर कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूत ने कहा कि योग में सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की अनूठी शक्ति है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। डेनमार्क में राजदूत मनीष प्रभात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के नाम लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। इसके अलावा अमरीका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
2: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता जानता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता में हैं और उन्होंने नौसेना के 3 स्वदेशी पोतो INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय वे कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत, देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल संरक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उसने चेतावनी दी है कि संघर्ष न रुकने पर कोई उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। वार्ता में के पक्ष का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और ईरान का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर खलीगाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड में होंगे। समझौते के तहत ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाएगी। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। बड़े बच्चों की शिक्षा में भी इनके उपयोग को सीमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जोनास गेहस्टेरे ने कहा है कि AI के उपयोग से छोटे बच्चों की शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के छूट जाने का खतरा बढ़ रहा है। नॉर्वे सरकार ने परीक्षा के प्रांतांकों में व्यापक गिरावट को देखते हुए 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले आत्मक प्रभाव को रोकना है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। समाचार लिखे जाने तक भारत ए ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप की अगर बात की जाए तो जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स देश के ऐसे पहले नरेश बन गए हैं जो अपने व्यक्तिगत कर भुगतान का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे। ये विवरण बृहस्पतिवार को साझा किया जाएगा। ब्रिटिश राजशाही के प्रशासनिक कार्यालय बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ये पहल पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वित्र चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। उन्होंने ऊंट को मरुस्थल का जहाज बताते हुए इसके संरक्षण का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को एक से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म धर्म करम से। आवाज है मुकेश की, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और रौनक सेन, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

ओली जी, आप सुनिए फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये नगमा। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है ओ पी नैयर का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और बच्चू शेख। इनके साथ ही इस गीत को पसंद करना चाहती हैं बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। कोहात बिहार से शेख जफ़र हसन और नरगिस जफ़र। नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिया नाज, अरहान बाबू, हमज़ा बाबू और मुजम्मिल बाबू। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

0: करनी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और लीजिए अब सुनिए फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोताएं हैं सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार और यशस्वी पाटीदार। इनके साथ ही हंसवी पाटीदार भी ये गीत सुनना चाहती हैं। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, प्रिंस एकांश और श्रीमती सरिता गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और कुमारी ध्वनि, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। आइए सुनते हैं इन सब श्रोताओं की पसंद का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम। गीतकार हैं असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत है फिल्म द जेंटलमैन से, आवाज़ें हैं SP बालसुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत है अनु मलिक का। जिन श्रोताओं ने हमें पत्र भेजे हैं उनके नाम हैं छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान और हृदया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्ताबा खान, पोतरी अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया लाल और रीता देवी।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है जतिन ललित का। गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं जबलपुर से सुरेश, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र ब्रिज।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: अश्विनी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: जबलपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाश

0: का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फोन करें गीत सुने कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे तक। हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। इस दौरान फोन करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉल लगाने से पहले अपने पास कम से कम 2 गीत और उनकी फिल्मों के नाम अवश्य तैयार रखिए। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
2: फोन करेंगे सुने।
1: जी फोन करेंगे सुने, कौन बोल रहे हैं बताइए।
2: जी मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ, सर ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह।
1: तो लक्ष्मण सिंह जी क्या करते हैं आप?
2: सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
1: खेती बाड़ी करते हैं, अभी खेत में क्या बोया है?
2: तो तैयारी चल रही सर, सोयाबीन बोने की।
1: जी अभी आप खेत तैयार कर रहे हैं ताकि बोया जा सके।
2: गर्मियों में मूंग बोती सर, कटाई पटाई हो गई, बखानी वगैरह हो गई है।
1: तो अब क्या बोने का इरादा है आपका?
2: अब सर सोयाबीन और उड़द बोएंगे, मक्का भी, तीनों चीजों को बोएंगे।
1: तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
2: आज फिल्म हरियाली और रास्ता को सुनना है सर, मुकेश की आवाज में गीत है सर
1: जी,
2: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ।
1: ये गीत क्यों सुनना चाहते हैं आप?
2: सर बहुत पसंद है उसके बोल अच्छे।
1: जी जी बोल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सेट सॉन्ग है हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करेगी, सुने।
1: सर नमस्कार, मैं गावली हेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र।

0: पंखा मंका वायरिंग करते हैं,
1: ठीक है।
0: उसके साथ आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ज्यादा, तो हमको फोन इन
1: बिल्कुल
0: प्रोग्राम अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगता है।
1: बिल्कुल, मैं हमेशा कहा करता हूँ, आकाशवाणी के कार्यक्रम ऐसे हैं या रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जिसमें आप काम करते करते ये रेडियो सुन भी सकते हैं, काम भी हर्ज नहीं होता, और इसके अलावा काम में आपका और अधिक मन लगता है रेडियो के
0: हाँ
1: सुनते
0: सही बात
1: समय,
0: बोले सर आपने,
1: है
0: तो
1: ना।
0: गाने वाने सुनते रहते हैं अच्छा लगता है, और थोड़ी मतलब ये जो श्रोताओं की बात सुनने के लिए मिलती है तो इसमें जानकारी भी मिलती रहती है तो और अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ अपने को मिलती रहती, कई श्रोता ऐसे होते हैं, कई जानकारियाँ देते हैं, कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ आपको मिलती है ना। तो आज क्या सुनना चाहेंगे दिनेश जी?
0: सर फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें गाना है क्या करते थे साजना।
1: तो दिनेश चौहान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो, नमस्कार।
1: हेलो हेलो
0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज वासुदा जिला विदिशा।
0: भागचंद जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बिल्कुल सर, कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ।
1: और सर, मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
0: मौसम भी ठीक है, बीच का है, ना गर्म है ना नरम है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे
0: ना।
1: हैं आप। और सर, और सब बढ़िया?
0: बढ़िया, आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है, आप क्या कर रहे हैं,
1: हम सर जी, हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे भागचंद जी?
1: आज फिल्म का, आज सुनवा देना, लव स्टोरी फिल्म का गाना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
0: देखिए, गाना कोई और बता रहे हैं और पिक्चर का नाम कुछ और बता रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो 1942 है, लव स्टोरी का है।
1: हाँ, ये वाला ना हो तो दूसरा बता दें सर।
0: नहीं, ये पिक्चर का नाम लव स्टोरी नहीं है, 1942 ए लव स्टोरी है। चलिए, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी, सुने।
1: हाँ नमस्कार साहब,
0: नमस्कार।
1: दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं क्या?
0: हाँ बिल्कुल, दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ साहब, राजेश अग्रवाल
0: राजेश अग्रवाल।
1: जी।
0: तो राजेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: वो पिक्चर का गीत है या धर्मेंद्र की पिक्चर है 1980 की,
0: जी गीत के बोल।
1: मैंने थोड़ी सी चढ़ाई तो दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा गीत है साहब। वो हाँ रफी साहब और आशा जी की आवाज में।
0: बड़े मतलब अलग से टाइप की पसंद है आपकी, यही गीत सुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं वो तो सर अच्छा लगता, आनंद बख्शी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के गीत अच्छे
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन
1: बनाए।
0: लोगों की तो जोड़ी ही अपने आप में एक
1: हाँ
0: गीत की
1: उनकी
0: श्रेष्ठता की
1: मतलब
0: पहचान हुआ करती। तो
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।
1: धन्यवाद सर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी, सुने।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते सर, बहुत प्रयास के बाद लगाया सर, करीब 175 बार लगा चुकी हूँ कॉल।
0: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं नौगढ़ से मीना दसौंधी बोल रही हूँ।
0: मीना दसौंधी, खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: जी सर।
0: जी मीना दसौंधी जी, मेरे से शायद आपकी पहली बार बात हो रही है।
1: जी सर, पहली बार हो रही है सर। आपका शुभ नाम?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। आप क्या करती हैं मीना जी?
1: सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: किचन का काम छोड़ के कॉल कर रही थी 10:30 बजे से।
0: जी जी जी जी।
1: घर जाके अब लगा।
0: जी जी, क्या सुनना चाहेंगी मीना जी आज आप?
1: सर मुझे कल फादर्स डे है, तो मुझे बॉस पिक्चर का गाना सुनवा दीजिए। मेरे पिताजी को डेडिकेट करूंगी सर, वो इस दुनिया में तो नहीं है अभी, उनका मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो उन्हीं के लिए बॉस पिक्चर का सुनवा दीजिए। ईश्वर अल्लाह दोनों रब है, नूर खुदाया तुझ में सब है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या है, बड़ा अच्छा लगता है जबकि हम लोग माता पिता को इतना मान देते हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं केवल उनकी वजह से होते हैं, है ना। और हमारा
1: जी
0: जी जी जी, आज हम जिस कॉन्फिडेंस से, जिस आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो केवल उनके संस्कार हैं। और है ना,
1: पहले वो फिर अपन,
0: वही। जी जी जी। और जो लोग इस बात को मानते हैं वो निश्चित ही मेरी नज़र में तो बहुत बढ़िया होते हैं, है ना।
1: वैसे
0: और
1: तो सर हर रोज फादर्स डे मदर्स डे होता है, हर दिन उन्हीं का है, लेकिन ये स्पेशल डे रहे तो स्पेशल रूप से मनाना पड़ता है।
0: जी जी जी। देखिए हमारे जन्मदाताओं को मान दिए बगैर हम कुछ है ही नहीं, है ना।
1: जी सर, उनको
0: और उनको मान देंगे तो हमारे रास्ते अपने आप सारे खुलते चले जाएंगे, और रास्ते कितनी भी परेशानियां आए वो मिनटों में आपकी शायद गायब हो जाएगी, है ना।
1: माता पिता, गुरु, शिक्षक और एक भगवान, ये 4-5 तो बिल्कुल आदरणीय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही यही। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम
1: नमस्कार।
0: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी
1: हेलो।
0: किससे बात हो रही है? हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हम ग्राम कानासिला, तहसील कालपी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: राजेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ब्लेंड हैं तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं, दुकान चलाते हैं और संगीत से प्रेम है तो
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: नाल
0: बढ़िया।
1: बजाते हैं और गायकी भी करते हैं।
0: क्या बजाते हैं?
1: नाल नाल
0: नाल? हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है।
1: ये मतलब ढोलक।
0: ढोलक बजाते हैं। अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, ये गीत हो, संगीत हो, है ना, ये तो बड़े हमारा जो समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप ब्लाइंड हैं और उसके बाद में किराने की दुकान भी चलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि मतलब आप अपनी आजीविका खुद अर्जित करते हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: तो
1: रेडियो बहुत दिन से सुनते हैं, मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है। कम से कम मुझे 30 साल हो गया रेडियो सुनते थे। मैं रेडियो का शुरू से बहुत बड़ा फैन। मुझे रेडियो बिना तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
0: रेडियो है ही ऐसी चीज़ भाई, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे तब भी रेडियो सुनते सुनते पढ़ा करते थे। और
1: जी जी
0: किसी ने
1: जी
0: हमको
1: जी
0: बताया, रेडियो सुनते सुनते जब हम पढ़ते हैं तो उससे दो तरफ दिमाग रहता है, तो दिमाग बढ़ता है। पता नहीं वो
1: हाँ, अब
0: बात
1: तो
0: कितनी
1: अगर
0: सही थी कितनी गलत, लेकिन उसमें ही बड़ा मज़ा आता था और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए रेडियो से बड़ा अच्छा, जबकि मेरे यहाँ डेग रखा हुआ है दुकान सबको, लेकिन मैं बजाता नहीं, रेडियो बजता है मेरा बस।
0: जी जी जी जी
1: बहुत दिन में आपके यहाँ मेरा फोन लगवाया, कम से कम 6 महीने से मेरी आज बात हो रही है।
0: तो ये बताइए कि आज क्या सुनना चाहेंगे राजेश जी?
1: मुझे याद था
0: देखिए राजेश जी, हम पहले ही बोलते हैं कि दो गीत आप तैयार रखिए और दो फिल्मों के नाम, है ना।
1: हाँ, सही कहा आपने।
0: हाँ, बताइए
1: उसका सुना दीजिए, खिलौना फिल्म है, खिलौना।
0: जी।
1: अगर वो गाना है लता जी ने गाया हुआ है, तू कलम से बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, वो एक गाना लता जी की आवाज में है, बहुत सुंदर गीत है और मुझे पुराने गीत ही सुनने का शौक है।
0: बहुत अच्छा। पुराने गीतों में एक रस आनंद तो होता ही है, कुछ यादें भी हम लोगों की जुड़ी होती है पुराने गीतों से, क्योंकि हम भी तो पुराने हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है और गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत
1: जी
0: का
1: जी जी
0: आनंद।

0: अभी आपने सुना खिलौना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने अब संपन्न होता है। अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रायोजित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: देना है इनको,
1: खिलर देंगे
2: फिर। साइलेंट में रखो पहले नीरज,
1: ये दरवाजा लटकवा देना भैया, दरवाजा थोड़ा सा रहिएगा।
3: नमस्कार।

श्रोताओं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के इस भव्य और ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह में आपका स्वागत है। पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह का पूरा माहौल इस समय उत्साह, ऊर्जा, शैक्षणिक गरिमा से सराबोर है। श्रोताओं, हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि आज का दिन इस विश्वविद्यालय के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, हया नज़र में दामन पाक ज़रूरी है, जो भी है बात साफ साफ ज़रूरी है। हम सब बुलंदी पर पहुँचे, मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। ये पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक

ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कारधानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद 20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3री बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल ITDM परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमल्या इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती माँ नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कारधानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कारधानी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है।
जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि, पक्षियों का

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: ऑनलाइन डिस्कनेक्ट है।

0: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आरसब खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।
1: अपन को एक माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घा पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

माननीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायक गण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपतिगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर्य पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को एक ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि A+ से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा A+ ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है, वह 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरम्भ किए गए। BTEC कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 पीएचडी धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 डीएससी और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया है, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को।
1: गौरव की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल, कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी, कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि, शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी, कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021, दीपांशु मिश्रा एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तालियां बजती रहें। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी एमए इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हमको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए ये भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष हाथी रही।

0: है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे हैं। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्य प्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज़्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा, ये आज सौभाग्य की बात। दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आज़ादी के लिए हमारी इस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता बुद्धि योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सिंह सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंतें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी थी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान हूँ, अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो बताया, उसको आज्ञा का पालन करो और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े। जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही और हमारे अपने सरकार के माध्यम से भी हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉपआउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी मैडम को भी, आपको भी प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा। आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
2: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस पावन अवसर पर गौड़बाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूँगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं, जब भी हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटा भी हमने देखा, उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको 5-5 गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है, और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया, करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूँ कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूँ, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरियात कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

इस शिक्षण समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरंगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती

ये भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रति, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति के प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजन, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 76 इयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है क्योंकि वो स्वाभिमानी है। अपना दुख दर्द, अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं। खुद आके खुद के बारे में लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद, क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य होता। जो भी बेटियाँ, जो भी बेटाएं, कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी, जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती हूं। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए

प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रमों चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे, क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अवसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग है। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है।
हम सबकी ऐसे सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आ अब लौट चलें फिल्म से, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और जसविंदर नरूला ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जब वी मेट फिल्म से है। उस्ताद राशिद खान ने इस गीत को गाया है, लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का।

केसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसे गाया था अरिजीत सिंह और असीस कौर ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अरिजीत सिंह की है आवाज में। फिल्म का नाम है कलंक।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं विनोद कुमार सेन और साथियों का गाया विकास गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी शिवपुरी से ही लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं अरुण दाते। पहले सुनते हैं ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण दाते के गाए भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुर्जर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

कार्यक्रम के अंत में गुलजार का लिखा ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म है मौसम।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं, वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने ब्राह्मणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुर्गागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने

कहा कि आज आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा में देशभर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। एनटीए ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, पीओएस मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के

0: निष्ठा पूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूं। ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

0: आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरो मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही।

से बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 बजे प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों आज है जून माह का तीसरा रविवार और आज हम सभी फादर्स डे यानी पितृ दिवस मना रहे हैं। ये पिताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बाल मित्रों पितृ दिवस की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ में पिता धर्म तथा पुरुषों द्वारा परवरिश का सम्मान करने के लिए हुई। सबसे पहले पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में 5 जुलाई वर्ष 1908 में इसे मनाया गया था। ग्रेस गोल्डन क्लिंटन द्वारा प्रथम फादर्स डे चर्च आज भी सेंट्रल यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के नाम से फेयरमोंट में मौजूद है। बाल मित्रों पिता एक ऐसा शब्द है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले अपने पिता की उंगली थामता है और एक नन्हा सा बच्चा पिता की उंगली थामे सुकून पाता है। बाल साथियों पिता घर का वो हिस्सा होते हैं जो खुद को सख्त बनाकर हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं और जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार करते हैं। बाल साथियों माँ यदि जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। पिता ही वो इंसान होते हैं जो कभी माँ का प्यार देते हैं तो कभी शिक्षक बनकर गलतियां बताते हैं तो कभी दोस्त

बनकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और पिता ही दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी अधिक तरक्की करे, उनसे भी अधिक नाम कमाए। बल्कि तो जीवन को दिशा देने वाले पिता के लिए एक खास दिन मनाना हमारे जीवन में दिए गए उनके योगदान के समतुल्य तो नहीं हो सकता, पर फादर्स डे के रूप में हमें वो मौका जरूर दिया है जब हम उनके प्यार, मदद और अपनेपन को महसूस कर उनसे ये कह सकें कि मैं आज जो भी हूँ या आगे जो भी बनूंगा वो आपके बिना संभव नहीं था। तो चलिए बाल साथियों, देर किस बात की, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। और बाल साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे प्यारा कौन है तो आप यही कह उठेंगे,

0: बाल साथियों, अभी आपने सुना मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की। समीर के गीत को संगीत से सवारा था हिमेश रेशमिया ने। और बाल मित्रों, आज हम सभी योग दिवस भी मना रहे हैं। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब अपने आप से ही अलग से हो गए हैं और योग हमें पुनः अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। बस साथियों, योग मन शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है और ये दिवस इस अनूठी कला का आनंद लेने के लिए ही मनाया जाता है। योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने सितंबर वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ये सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ष का सबसे लंबा दिन है। बल में तो 21 जून वर्ष 2015 का दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भारत में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसे सभी ने उत्साह के साथ मनाया। न सिर्फ भारत में बल्कि इस तरह के शिविरों का आयोजन दुनिया के अन्य हिस्सों में भी किया गया। हम आपको बता दें बाल मित्रों कि योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। योग अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। बाल मित्रों, हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन इतिहास में एक वीरांगना ऐसी भी है जिन्हें उनके पराक्रम के लिए याद किया जाता है और वे हैं रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती बाल साथियों हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की थी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध भी किए। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी। बल में तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर वर्ष 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण ही आपका नाम दुर्गावती रखा गया। मन तो रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था। वर्ष 1542 में आपका विवाह दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठा कर खुद राज्य की शासिका बन गई। 50 से भी अधिक युद्ध उन्होंने लड़े। इतना ही नहीं बाल मित्रों, रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके। अकबर रानी के राज्य को हड़पना चाहता था। उसने योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करने की ठानी और वर्ष 1564 में दोबारा रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हो लड़ाई के लिए आई। लड़ते लड़ते रानी घायल हो गई और 24 जून को लड़ाई के दौरान ही अपने आप को सुरक्षित न देख उन्होंने अपनी ही तलवार अपने पेट में घुसा ली और वीर गति प्राप्त की। और इस तरह इस वीरांगना ने युद्ध में अपने साहस और बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। इस चर्चा के बाद बाल मित्रों, अब आपको लिए चलते हैं नन्हे अंकुर क्रम की ओर। बाल मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारी सी बालिका आई हुई है जिसके हाथ में हम देख रहे हैं एक गिटार है। चलिए जानते हैं कि ये गिटार बजाती हैं तो क्या साथ में गाती भी हैं। चलिए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम आर्या खरे है।
0: आर्या खरे। आर्या, हम आपके हाथ में गिटार देख रहे हैं, तो आप गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, आपको गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ?
1: जी, मैं एक मूवी देख रही थी कि उसमें मैंने देखा, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। देन मेरे घर में एक गिटार रखा हुआ था जो कि 2 साल से पैक था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे निकाल के यूज करूं। फिर मैंने यूट्यूब से निकाला, उसके डिटेल्स निकाले, देन बेसिक मैंने यूट्यूब से सीखा, उसके बाद आज मैं यहाँ तक आई हूँ।
0: मतलब आपने, आपको इंस्पिरेशन मिली यूट्यूब से, आपने निकाला और वहीं से आपका ये सफर शुरू हुआ।
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगी?
1: जी, मैं एक भजन सुनाऊंगी गिटार पे, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
0: चलिए सुनाइए।

0: बहुत ही प्यारा भजन आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आर्या, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: जी मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: आप 8th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, आपको और किस किस चीज का शौक है, गाने के अलावा या गिटार बजाने के अलावा और कौन कौन से शौक आप रखती हैं?
1: जी मुझे डांस का भी शौक है और मैं पेंटिंग भी करती हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आर्या, ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी?
1: जी मैं बड़े होके पहले UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। अच्छा आर्या, आप हमारे बाल साथियों को कुछ और सुनाना चाहेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं एक भजन और सुनाना चाहूंगी।
0: चलिए सुनाइए।

0: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, बहुत ही प्यारा भजन आपने आर्या सुनाया। अच्छा आर्या, ये बताइए आपके परिवार में क्या और कोई भी गिटार बजाता है?
1: जी नहीं, मैंने सिर्फ फोन से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला था उसके बाद से।
0: अच्छा, मतलब आप स्वयं से ही आपने शुरुआत की और आप स्वयं ही गिटार बजाती हैं?
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आर्या, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, आपने हमको इतने प्यारे भजन सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: बन तो हम सभी आगामी 26 जून को मुहर्रम पर्व मनाएंगे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें युद्ध और हिंसा पूरी तरह से वर्जित है। ये पर्व शांति, संयम और न्याय की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है। ये दिन मित्रों सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन हुसैन के सबसे छोटे बेटे हजरत अली असगर की कुर्बानी को भी याद किया जाता है जो मात्र 6 महीने के थे। मित्रों करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार ने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान इसी दिन कुर्बान की थी। करबला में शहादत पाने वाले 6 महीने के अली असगर की कहानी भी कुछ ऐसी जो आंखों में आंसू ला दे। इस्लामी मलसाथियों मुहर्रम को उत्सव की तरह न मनाकर शोक और मातम के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं, दान करते हैं और धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं। लोग इमाम हुसैन की याद में काले कपड़े पहनते

0: हैं और ताजिए निकालते हैं। भारत जैसे सांप्रदायिक देश में बाल मित्रों मुहर्रम को शांति और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है।
1: और बाल साथियों अब बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर।
0: बाल मित्रों कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा बचपन होता है। न कोई जिम्मेदारी का बोझ होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ खुद से मतलब। ऐसा मस्त समय जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आता और इन सब मस्ती के पल का साक्षी होता है हमारा विद्यालय। हमारे व्यक्तित्व को बनाने और निखारने में स्कूल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बाल साथियों विद्यालय की परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से हमारा देश ज्ञान का स्रोत रहा है। हमारे यहाँ तो आदिकाल से ही गुरुकुल परंपरा रही है। राजा महाराजा भी अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाते थे। यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम भी पढ़ने के लिए गुरुकुल आश्रम गए थे, ये हम सभी जानते हैं। बाल मित्रों नए शिक्षण सत्र का मतलब है सब कुछ नया नया। अब आप भी अपना नया बैग, नई यूनिफॉर्म मंगाकर तैयार करवा लें, अपनी किताबें और कॉपियां भी मंगाकर उन्हें अच्छे से कवर करके अपना नाम भी लिखकर तैयार कर लें। अपने जूते, टाई, बेल्ट और लंच बॉक्स भी निकाल कर रख लें, क्योंकि वो भी तो गर्मी की छुट्टियों में काफी समय से अलमारी में बंद होंगे, उन्हें भी धोकर पोंछकर तैयार कर लें। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण आपके जागने और सोने का रूटीन भी बदल गया होगा, तो अब से रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें।
2: इसी चर्चा के साथ बाल साथियों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधुर दीदी को।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में 21,00,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थियों के लिए 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। NTA ने इस बार परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को राष्ट्र, समाज और जनता के लिए अपने जीवन को उपयोगी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज सम्पन्न हो रहा है। यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33 और 6:15 पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग विशेषज्ञ सपना अग्रवाल से सुनीता सिंह की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे आज शाम 6:00। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य मैनचेस्टर में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दोपहर के 3:35 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

शोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़, खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे। अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से। और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

0: मशहूर हो जाए।
1: खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोता। इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या, मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी मम

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहेगी।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये। और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इसी गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इसी गीत के लिए सादुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन?
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलेस, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी, कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। ये तो बेहोश हो गया, लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे। ओके।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीकचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए, और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
4: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
2: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
2: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
4: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
2: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जिनी पैराम्बा।
2: क्या करती हो?
4: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
4: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
2: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ। वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
2: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
4: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
2: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
4: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
4: जी, मेरी?
0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
2: प्लीज मिसेस मोलेस, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
4: आप कहना क्या चाहते हैं?
2: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
2: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
4: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
0: नहीं,
3: सर मैं ये कह रहा था।
2: जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
2: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर मैं कह रहा था कि
2: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
4: नहीं,
2: इट्स माय ऑर्डर।
4: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।
2: चलो।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओं के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस, रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच, इन सफेद गिद्धों के दल छाए मन की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मुलाय। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो बेंच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं। बेंच,
0: इसे इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जिनी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जिनी,
1: मुझे बचाओ।
0: जिनी,
1: बेंच,
0: जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
1: हाँ,
2: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मोलेज, आपकी वजह से, सिर्फ आप ही की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन,

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सज़ा को माफ़ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंज, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंज, कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: हमें अफसोस है मिसेस मुलाय, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
1: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
0: सचमुच मैं बहुत दुखी। लाश देने का ऑर्डर नहीं
1: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है। उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
0: Really? We are sorry.
1: बेंजी, अपनी कविता की कॉपियां भी तू लेता जा बेंजी, ये सारी कॉपियां लेता जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक

सुदर्शन कुमार, केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।

0: कंपनी में, तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी
1: ये सोच कर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र
0: केंद्र
1: है।
0: है हो या, और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज
1: हाँ
0: भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है, उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे। और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात
1: वाह वाह वाह।
0: है।
1: ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो
0: हाँ,
1: जरा आए।
0: तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मज़े वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहाँ पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूँगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो ऐड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो ऐड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की। एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज़ है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है।
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली का इस तरह से
1: कितनी
0: है।
1: सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहां सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए। कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त

0: बताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा, पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी
0: पहला
1: तरफ से नहीं
0: कदम
1: आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा,
1: तमाशा
0: इतना
1: बन
0: डर
1: जाएगी।
0: मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी ज़रूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह,
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया। उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल
0: ओके।
1: हाँ मतलब उतना सा। खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है,
0: हाँ,
1: नहीं
0: सवाल
1: है
0: आता है कि ये आखिर
1: हाँ
0: क्या है
1: क्या
0: ये।
1: है, राइट। श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियाँ पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
0: वाह,
1: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह,
1: बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते, फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी
0: वाह,
1: ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफकोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये, जो किताब के नाम की घटना है और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है, ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे,
1: सही बात।
0: क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी।
1: राइट।
0: की बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी यानी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए, प्ले तो करना था अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह, क्या प्रयोग!
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 24 मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफ़ी सारे उस पर INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज़्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था और
0: और वो भी
1: पापा ने वो
0: पापा के
1: निर्देशित.
0: निर्देशन में।
1: एग्जैक्टली. तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को, क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट दोनों चीज़ें हुई थी. उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान. कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय,
0: बिल्कुल।
1: और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें. छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है,
0: हम
1: ऐसा
0: उस
1: मुझे
0: दौर
1: नहीं
0: की बात
1: लगता.
0: कर रहे हैं जब टेलीविजन उस
1: हाँ,
0: तरह से नहीं आया
1: नहीं
0: था
1: आया था.
0: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी
1: एकदम एकदम
0: और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही
1: करेक्ट
0: जाती हैं।
1: करेक्ट करेक्ट. तो ये प्ले था. उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी. तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था. पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े थे, बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था. तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया, अब मैं जो करूँगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूँगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी. एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था. और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था.
0: ओ हो, गजब।
1: इट वॉज इज लॉन्च. तो और वो प्ले बहुत चला, बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मज़ा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे पांच छह बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले. और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले, मैं इसलिए
0: बिल्कुल।
1: कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो. तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की.
0: वाह।
1: ओके. और फिर उसके बाद तो इट इज़ जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है. उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफ़ी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए. तो थिएटर वो करते रहे, पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे.
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंड्स अप का ये एक मज़ेदार किस्सा है. उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के. तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था. और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में.
0: हाँ जी।
1: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके भेज देते थे. तो ये एक कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो
0: वाह,
1: उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस, और
0: क्या
1: उन्हें कुछ
0: प्यारी
1: नहीं
0: बात है,
1: दिखता।
0: वाह। यहाँ भी गाने की जगह बन रही है, और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं,
0: वाह
1: वो
0: वाह
1: वाला।
0: वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर,

नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

पेश है इस घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ. केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ. हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय विद्यालयों सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध न हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल

0: आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं। दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए। वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत करके हम न केवल धन और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करे और संरक्षण के उपाय अपनाए। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, एक सार्थक और दूरदर्शी विचार है जो हमें उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय योग का जीवन में महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर।
1: योग विज्ञान का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल योग कहलाता है। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु के धज प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। श्रीमद्भागवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ रहा है। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण और आदर्श समाज की रचना करना है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन की संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं मन के साथ ही चेतना भी शुद्ध और सबल होती है। योग अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का आधार मेरुदंड और मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है, ये योग द्वारा ही संभव है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के चरम व परम लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर सकता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है, यह जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण। योग जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवन जीने की कला, अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य में निहित सृजनात्मक शक्तियों का जागरण एवं रूपांतरण ही योग है। मन को शांत एवं नियंत्रित करने की कुशल विद्या एवं दिव्यता को प्राप्त करना ही योग कहलाता है। परम सत्य को जानना एवं परम सत्य में रमण करना ही योग है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही योग है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के शब्दों में योग उस साधन प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। योग का लक्ष्य एक ही है, नर से नारायण बनाना। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह जितना भी एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सभी वैज्ञानिक खोजों का रहस्य है जो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। जीवन में योग की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में योग उच्च जीवन प्राप्त करने की विद्या है, जो व्यवहारिक जीवन को उच्च

उच्चतर स्तर पर ले जाती है। सर्वोच्च स्तर पर जाकर यही मोक्ष का कारण बनती है। इसका आरंभ मन के नियंत्रण से होता है। जीवन में सभी स्थूल कर्म शरीर से ही होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मन है। जैसे मन में विचार होते हैं, वैसे ही कर्म शरीर द्वारा होते हैं। इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों के लिए मन ही जिम्मेदार है। इसलिए योग साधना का आरंभ मन के नियंत्रण से ही किया जाता है। योग के कई मार्ग हैं, जिनमें राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाद योग, तंत्र योग आदि। इनमें से किसी की भी साधना की जाए, सभी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनके लिए विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा कई योगी इनकी साधना भी करवाते हैं। ज्ञान साधना के लिए योग वशिष्ठ पूर्ण योग ग्रंथ है तथा शंकराचार्य इसके पूर्ण उपासक थे। व्यावहारिक जीवन में गीता का योग सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार किसी की भी उपासना कर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। शरीर में आत्मा एक कारण तत्व है, जो सभी क्रियाओं का कारण है, किंतु इसकी सभी क्रियाएं मन से ही होती हैं। इसलिए ये मन ही करता है। संसार की अनुभूति भी मन को होती है। सुख दुख का अनुभव, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी दुर्गुण हैं, सभी मन की ही उपज है। इसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, सेवा आदि जितने भी भाव हैं, वे भी सभी मन की ही उपज है। अतः मन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, वरना समाज व्यवस्था रह ही नहीं सकती। ये मन ही संसार है। संसार के सभी बंधन मन के ही कारण हैं तथा मन से ही मुक्त होना मुक्ति है। आत्मा को जानने वाला भी मन ही है, जो आत्मा से भिन्न ही है। आत्मा ज्ञेय है तथा मन ही उसका ज्ञाता है। जिसे ज्ञान होता है, यदि मन ना रहे तो इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। अनुभूति के बाद भी उसकी व्याख्या मन के द्वारा ही की जा सकती है। अतः मन की ही सर्वाधिक भूमिका है। यदि मन आत्मा में विलीन हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? जो मन सांसारिक विषयों से ही भरा है, वह उस चैतन्य को जान ही नहीं सकता। मन को सबसे पहले सांसारिक विषयों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। मन को इन विषयों से खाली करना प्रथम चरण है। योग द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर विकास। एक ही समय में इन सभी स्तरों पर उन्नति केवल योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव है। शारीरिक विकास, योगिक क्रियाएं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि, जो जीवन के एक एक अंग पर क्रिया कर उन्हें उन्नत करती है। मानसिक विकास, मन को एकाग्र कर सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिससे आत्म विकास, साहस, धैर्य, उत्साह, संयम आदि गुण विकसित होते हैं। ध्यान व प्राणायाम की क्रियाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक हैं। भावनात्मक दृष्टि से भी भक्ति योग भावनाओं को परिपक्व बनाने में सबसे सशक्त माध्यम है। बौद्धिक विकास के लिए मन की एकाग्रता अपरिहार्य है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स शिथिल होकर स्वतः ही उन्नत हो जाते हैं। अतः बुद्धि तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। सामाजिक विकास भी योग के माध्यम से होता है। मन की शांत व एकाग्र अवस्था व स्वतः ही समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण आध्यात्मिक विकास की नींव है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन को शांत व शून्यता के प्रति अग्रसर करता है। आध्यात्मिक विकास जीवन की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को रोगों के होने का कारण माना जाता है, और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना अर्थात जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक के उपचार कर रोगों को ठीक किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, त्रिदोष और सप्तधातु का असंतुलित होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है। औषधियों के द्वारा वात, पित्त, कफ को संतुलित कर रोग निवृत्ति की जाती है, परंतु योग चिकित्सा के अनुसार विजातीय द्रव्य का शरीर में रुक जाना अर्थात किसी भी अंग को प्रभावित करना रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य के वातावरण में जीवाणु के उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यही रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग में विजातीय द्रव्य द्वारा बना वह वातावरण है जिससे हानिकारक जीवाणु पनपते हैं।

0: और लक्षणों के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि रोगों का कारण जीवाणु नहीं बल्कि वह दूषित पदार्थ है जो शरीर में रुक जाते हैं। योग चिकित्सा द्वारा शरीर के इन विजातीय द्रव्यों टॉक्सिन को शरीर से दूर कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु पनपने का वातावरण ही समाप्त ही कर दिया जाता है, जिससे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है। योग चिकित्सा द्वारा रोग शरीर के हर स्तर पर शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर से दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है तथा सभी स्तरों की पूर्ण क्षमता को उभार कर संतुलित विकास के लिए अग्रसर किया जाता है। स्वास्थ्य ही शरीर की धरोहर है। ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है, ये बड़े पुण्य और अपने अच्छे कर्मों का वरदान है कि आप अपने आनंद में जीवन को तनाव व रोग युक्त न बनाए। इसलिए लय प्रतिज्ञा हम करेंगे योग, रहेंगे निरोग, रहेंगे निरोग।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे रघुवीर पाराशर। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है पर चर्चा करने का। साथियों, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाती है। विद्यालयी शिक्षा के बाद महाविद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है, जो विद्यार्थियों के भविष्य और कैरियर की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। दोस्तों, महाविद्यालय शिक्षा का वह स्तर है जहां विद्यार्थी अपने रुचि और लक्ष्य के अनुसार विषयों का चयन करते हैं। यहां उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सामान्य शिक्षा दी जाती है, जबकि महाविद्यालय में उन्हें विशेष विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यही अध्ययन आगे चलकर उनके कैरियर की नींव बनाता है। साथियों, महाविद्यालय विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नेतृत्व, समय प्रबंधन, टीम वर्क, संचार कौशल और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कई महाविद्यालय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। साथियों, महाविद्यालय केवल शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं होता, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र है। खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। साथियों, महाविद्यालय जीवन का सही उपयोग करना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। उन्हें समय का सदुपयोग करते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई नई जानकारियां प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, विद्यार्थियों को महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने करियर को सफल बना सकते हैं। महाविद्यालय विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह उन्हें कैरियर की मजबूत नींव तैयार कर देता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत याराना फिल्म से किशोर कुमार के स्वर में, लिखा अनजान ने, संगीत राजेश रोशन का। श्रोता, दोस्ती वो नरम धूप है जो सर्दियों में सुकून देती है, और वो ठंडी छांव है जो झुलसती धूप में राहत देती है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपके खुशियों में शामिल हो, बल्कि वो है जो आपके आंसू को आपके मुस्कुराने से पहले पहचान ले। इस दुनिया में रिश्ते तो हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती के रिश्ते को हम खुद चुनते हैं, जो बिना शर्त के हर समय हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। किसी शायर ने खूब कहा है, रिश्तों की दुनिया में सबसे प्यारा है दोस्ती का रिश्ता, जो आँखों के इशारे से दिल की हर बात जान जाता है।

माँ अगर घर की धड़कन है तो पिता उस धड़कन को चलाने वाली सांस। माँ का प्यार आंसुओं में बहता है तो पिता का प्यार पसीने में चमकता है। माँ हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता दुनिया में संभलना सिखाते हैं। माँ लोरी गाकर सुलाती है तो पिता जागकर हमारे सपने सजाते हैं।

तो आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

विजयपथ फिल्म का ये गीत अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में सुना। लीजिए अब सुनिए प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, लिखा नीरज ने, संगीत सचिन देव बर्मन का।

यहीं संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये जबलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज शाम 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से मैच की समाप्ति तक रिले किया जाएगा। देशभक्ति फिल्मी गीत सुनिएगा शाम 6:10 से। तो श्रोताओं, ये होंगे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और अब सुने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल सुबह 10:10 पर विश्व दर्पण और 10:30 पर पीपल्स पद्मा और 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 तक, युवाणी कार्यक्रम शाम 5:02 से, सुर्खियों में रात 8 बजे और शाम 6:40 पर, आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान और शाम 6:45 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का योगदान प्रादेशिक समाचार दर्शन, और रात 8 बजे सुर्खियों में ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा और रात 10:30 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन होगा। लोक संगीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। सुबह 7:20 पर होगा गुड मॉर्निंग जबलपुर और लोक प्रस्थान होगा सुबह 9 बजे। इस सुबह 10:05 पर सुनिएगा वंदे मातरम गौरवगान की 1.5 सदी। तो श्रोताओं, ये होंगे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े AVS समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Talks between the US and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Bergenstock today. US Vice President J.D. Vance is leading the US delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the US military said that the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are set to participate in quadrilateral talks later in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the US delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, held a meeting with the Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है नई क्षमता तैयार कर रहा है नई कनेक्टिविटी बना रहा है नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है
3: Defence Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted amid tight security arrangements today. It was held across 551 cities in India and 14 cities abroad for more than 22.7 lakh candidates. The examination was conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in English and 12 Indian languages. In Tamil Nadu, seven people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The National Disaster Response Force, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a three-member committee to submit a report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness.
1: Yoga keval hamare sharirik swasthya par hi focus nahi karta. Yoga manasik swasthya se शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है
3: The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh.

मीडियम वेव पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीत।

अभी आपने पीपली लाइव फिल्म से इंडियन ओशन का गाया ये देशभक्ति गीत सुना। यही संपन्न होता है फिल्मी देशभक्ति गीत का कार्यक्रम आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

0: प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
3: First Ball 20.

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
2: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate, INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted today amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a 3-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of each deceased. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the ammonia gas leak incident at a seafood export unit in Tiruvallur, Tamil Nadu. In social media posts, Mr. Radhakrishnan and Mr. Modi extended their condolences to the bereaved families and prayed for the speedy recovery of those undergoing treatment. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. Prime Minister Narendra Modi expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. In a social media post, the Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating hosts New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, the Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topo. Today's win also marked their return to the Pro League next season. Lalru Simai was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised for their exceptional performance throughout the tournament. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज और 102.9 मेगाहर्ट्ज एवं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की दूसरी सभा। कल सुबह 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।